0: Itchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा।

आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं एक बहुत ही सिक्योर इंसान हूँ और जब मैं रिलेशनशिप्स में होती हूँ तब भी मैं लार्जली बाय एंड लार्ज सिक्योर होती हूँ. लेकिन आई हैव नोटिस दिस वन पैटर्न ऑफ माइंड. ठीक है, हर रिलेशनशिप में जब भी मेरा बंदा डिसाइड्स टू मीट उसकी ना बहुत अच्छी बचपन की दोस्त, उसके साथ मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, आई यू ओके विद इट? ऑब्वियो मजबूरी में कहना पड़ता है या ऑफकोर्स आई एम ओके विद इट, यार क्या प्रॉब्लम है, तेरी बचपन की दोस्त है. बट To tell you very honestly, शायद I'm not 100% okay with it, because कहीं ना कहीं I've realized that I also feel very territorial and jealous कि इस relationship में तुझे क्या नहीं मिल रहा है जो तुझे अपनी ये बचपन की best friend के साथ coffee पीना है. And even though coffee lasts just, you know, 1.5-2 hours, मतलब मैं उन दो घंटे में ना wait करते करते घड़ी को देखते देखते ऐसे सड़ भुन जाती हूँ. And I think it's just a very natural human response, but ऐसा मुझे लग रहा है. क्या आप भी जब आपका relationship में boyfriend या girlfriend अपने बचपन के दोस्त को मिलने जाते हैं who happens to be of the opposite sex, क्या मेरी तरह आप भी like super territorial हो जाते हो और very unnaturally जल भुन जाते हो? अगर ऐसा सच है then why don't you hit me up and share your story with me, Morning Glory, Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, and mostly I really am a secure person. On that नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस

hey. बस तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एट योर सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल दे

0: Mirchi. It's hot.
1: Saathi re, thoda theher ja, abhi raaste

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक फॉर द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स। गाने का नाम है लिपस्टिक। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 10।

0: दिस सॉन्ग स्क्रीम्स दैट पंजाबी आ गए हैं। दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन। गाने का नाम है डीलर। 11 हफ्तों से पंजाबी इस काउंटडाउन पे रेजिडेंट बन चुके हैं। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था। डोंट वरी, शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे। अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स बाय मीका सिंह। नाम ऐसा है, सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है। आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है। ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे। चाहे उनके फिल्मों के गाने हो, नॉन फिल्म गाने हो, मीका सिंह इज अ कैरेक्टर इन हिज ओन राइट। सोचने वाली बात है, ऑल आर्टिस्ट वॉन्ट दैट आइडेंटिफिकेशन, राइट? कितनी बार होता है दैट हम कोई गाना चलाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है, उसने गाया है, किसका गाना है। बट विद मीका सिंह देयर इज नेवर अ स्कोप ऑफ एनी कंफ्यूजन। उनकी आवाज ही उनके गानों की टेक अवे फैक्टर है। पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था, आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है। कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेक अवे फैक्टर होता है। रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, एक बार फिर से सुनाती हूँ, बताओ ये कौन सा गाना है।

0: @RJKalyug on Instagram पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, नीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। Now back to the countdown, अगले वाला गाना इस दया दा रैपर मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanega. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanega. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाय और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं for our segment which is called हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में दो बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

मीका का गाना कॉल्ड समथिंग समथिंग. इफ यू आर फ्रॉम द 2000s का जेनरेशन, यू नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉन्ग. बिफोर मीका सिंह बिकेम वॉइस ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एंथम, जैसे कि मौजा ही मौजा, सुबह होने ना दे फ्रॉम देसी बॉयज, आंख मारे फ्रॉम सिम्बा, मतलब उनकी आवाज हम सुनते हैं और वो पार्टी वाली आवाज याद आती है, 440 वोल्ट फ्रॉम सुल्तान, मीका सिंह ओन्स ऑल दीज सॉन्ग्स. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेस का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनके एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन इट, आई चैलेंज यू, ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. द बिगेस्ट पार्टी वॉइस ऑफ आर जेनरेशन मीका की आवाज में, दिस इज समथिंग समथिंग, अ 2006 इंडी पॉप सॉन्ग प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे करेगा. एंजॉय.

0: गॉड मीका सिंह, योर वॉइस हैज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म, मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है कुछ, मतलब नहीं नहीं मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे, दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे करिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रेकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना विच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर, हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोते का गाना, गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Gaana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot Gaana Indie Top 10 Kanika ke saath On Mirchi.
1: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Aksar jab hum baithte hain, music, movies ke baare mein baat karte hain, har generation ke kuch aise guards hote hain, moral guard bolte hain unko, jo ye baatein shuru kar dete hain ki yaar, aaj ke music mein wo baat nahi hai. आज की फिल्मों में वो बात नहीं है. 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि तब के गानों में बात नहीं थी. अर्ली 2000s में जब बॉम्बे वाइकिंग अपना पॉप फ्यूजन ला रहे थे, तब 2000s वाले लोग बोल रहे थे कि आज के म्यूजिक में वो बात नहीं है. तो एक बात तो क्लियर है, लोगों का काम है कंप्लेन करना, वो कंप्लेन करते रहेंगे. व्हाट वी कैन डू थ्रू दिस शो इज आपको हर तरह के इंडिपेंडेंट म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराना. मे बी रोमांस, सैपी, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर नॉट फॉर यू, तो थोड़ा सिंथ पॉप, जैज पॉप आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे. मे बी अ फोक पॉप फ्यूजन इज समथिंग दैट यू लाइक. मैं ऐसे बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी तो आपको लगेगा पता नहीं क्या आ रहा है, लेकिन गाने का म्यूजिक जब कनेक्ट करता है ना, तो बस देयर इज नो रीजन व्हाई वी लाइक अ सॉन्ग. आज मैं आपको एक ऐसे गाने से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसका बेस तो फोक म्यूजिक है, बट फोक म्यूजिक के ऊपर पैकेजिंग सुपर मॉडर्न प्रोडक्शन की है. इट्स कॉल्ड उड़ी उड़ी बाय निशान सरकार. We'll play the whole song for you, लेकिन गाने के कुछ सेकंड सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये गाना बहुत फेमिलियर भी लगता है पर नया भी लगता है. एक तरफ राजस्थानी फोक की वो लाइन बिलोड़ी चुनरिया यूं ही उड़ी उड़ी जाए, दूसरी तरफ द बेस लाइन, द ग्रूव, जो यू नो इट्स सो कूल, इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो न्यू. What I absolutely love about this song and the producers of this song is कि उन्होंने folk music को कि यार ये तो उस जमाने का music है, आज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, हम इसको म्यूजियम में छुपा कर रखते हैं, ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है. उन्होंने उससे ही आज की language में बात करके दिखाई. गाना बहुत energetic है लेकिन over the top नहीं है. It's extremely danceable, groovable, लेकिन dance के लिए नहीं बना है. And chorus में एक ऐसी quality है that एक दो बार सुनो फिर पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है. And that's what makes independent Indian pop music so exciting. हमारा एज ओल्ड राजस्थानी फोक एंड ऊबर कूल प्रोडक्शन के साथ अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार. आई एम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

इस गाने को एक बार सुन के काम ही नहीं चलता है। गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय नीश एंड सरकार, याद रख लो। वापस सुनना है तो गाना ऐप पर जाके जल्दी सुनना। @RJKarega on Instagram पर आओ। ऐसा कोई गाना है विच यू थिंक दैट आई लाइक्ड इट, आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगेगा। हमसे आके शेयर करो एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। उसके बाद करण औजला इक्की का गाना, गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर। पूरे 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: ये गाना हर उस आर्टिस्ट के अंदर की आवाज को कैप्चर करता है जिसको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, बट नहीं, एवरी आर्टिस्ट हु इज ऑन अ जर्नी टू क्रिएशन कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट करते हैं। अनूप जैन ने उस फीलिंग को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इन दिस सॉन्ग जिसका नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: मिर्ची पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा आता है देखने में कि कौन सा गाना हुआ आउट, कौन सा गाना हुआ 2 पोजीशन नीचे। बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। अदनान सामी की आवाज में लिपस्टिक वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: उसके बाद दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 9।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डाब दबी ना।
0: मीका सिंह द अदर रैपर का चोरी ऑन गाना नंबर 8।
4: चोरी करती जंपर छोरे ने दे दिया बम्पर।
0: आदित्य रिखारी रैवट और कुटलेखा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 7। फिर गाना नंबर 6 पर वो मिट्टा रोर का शीशा।
5: तेरी आंखें पीछे लगे सुन दोना छोरी का हर।
0: हिमेश रेशमिया इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड शराब दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा वॉज ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। अनूप जैन की आवाज में हमने सुना अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
6: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में।
0: And the numero uno song of the week is yet again Baron by Banjare. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप मार लिया है बैरन ने। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। This हरियाणवी song is changing how music works, how it's blurring the boundaries between language and genres. Baron is playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
1: Number 1.

मथुरा को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है भजन कुमार। फॉलो मी ऑन माई चैनल।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर हफ्ते बॉलीवुड हमें कुछ बेचने की कोशिश करता है, कभी एक नया हीरो, कभी एक नई जोड़ी, कभी एक पुरानी याद और कभी कभी एक सपना। लेकिन इस हफ्ते मुझे एक चीज समझ आई, हिट्स बनाना मुश्किल है लेकिन बस क्रिएट करना काफी आसान, और इन दोनों के बीच का फर्क ही बॉलीवुड की असली कहानी है। क्योंकि इस हफ्ते मैंने देखा लोग फिल्मों से ज्यादा उनके ट्रेलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, गाने रिलीज होने से पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं और कुछ पुरानी कहानियां फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन शोर के इस समंदर में आखिर में सिर्फ एक चीज टिकती है, एंड दैट इज कनेक्शन। एक गाने का, एक कहानी का, या फिर एक इमोशन का। और आज हम वही ढूंढने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े बॉलीवुड काउंटडाउन में। हाय, इट्स मी सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20। एंड आज देखिए, पुरानी फ्रेंचाइजीज वापस आ रही हैं, पुराने गाने वापस आ रहे हैं और कुछ लोग अचानक हर जगह नजर आ रहे हैं। द दियोल ब्रदर्स, दिस सडनली एवरीवेयर। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑडियंस एक चीज जरूर अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज टैलेंट। लेकिन ऑडियंस एक और चीज कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट करती है, एंड दैट इज रेजिलियंस। शुरू करते हैं गाना नंबर 20 से। ये है बॉबी दियोल की आने वाली फिल्म बंदर का गाना क्यों मजा आ रहा है, सॉन्ग एंड कंपोज बाय विशाल मिश्रा। बाय द वे, बॉबी दियोल के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इनसेन, कहीं जाना मत, आई विल बी बैक।
0: नंबर 20।

0: मस्कारा और इम्तियाज अली की फिल्म्स का भी एक अजीब सा पैटर्न है। ऊपर से देखो तो लव स्टोरीज लगती हैं, लेकिन थोड़ा गौर करो तो प्यार उनकी फिल्म्स में डेस्टिनेशन कभी होता ही नहीं। प्यार तो बस एक जरिया है, प्यार तो बस एक रास्ता है खुद को ढूंढने का। इसलिए 11 फिल्म्स बाद भी इम्तियाज का सिनेमा अलग महसूस होता है, और इस हफ्ते उनके बारे में एक ऐसी कहानी पढ़ने को मिली जो मुझे एकदम फैसिनेटिंग लगी।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: दिस फिल्म मैन, जब वी मेट। और जब हम जब वी मेट की बात करते हैं तो आदित्य के रूप में सिर्फ शाहिद कपूर नजर आते हैं, एंड ऑनेस्टली उस रोल को शाहिद ने कम्प्लीटली ओन कर लिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आदित्य के लिए इम्तियाज अली की पहली चॉइस शाहिद नहीं थे, इट वॉज बॉबी देओल। इनफैक्ट सोचा ना था के बाद बॉबी ने ही इम्तियाज के टैलेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। स्क्रिप्ट को स्टूडियोज तक ले गए, फिल्म को पुश किया, लेकिन फिर हुए डीलेस, बजट्स बदले, कैलकुलेशंस बदले, और बॉलीवुड ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और यहाँ मुझे लगता है कि हम सिनेमा को थोड़ा गलत समझते हैं। हम फिल्मों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे जो हुआ वही होना था, जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा होता नहीं, फिल्में तकदीर नहीं होती, फिल्में इत्तेफाक होती हैं, खूबसूरत इत्तेफाक। एक एक्टर बदल जाए, एक डेट शिफ्ट हो जाए, एक प्रोड्यूसर मना कर दे, और पूरी कहानी बदल सकती है। क्या बॉबी देओल आदित्य को अच्छा प्ले करते? शायद। क्या फिल्म और बड़ी होती? शायद। क्या फिल्म उतनी खास ही नहीं बनती? शायद। हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर पता है, कभी कभी कास्टिंग डिसीजन सिर्फ एक फिल्म नहीं बदलते, वो पूरे पॉप कल्चर का फ्यूचर बदल देते हैं। और अब एक गाना जो इस हफ्ते चार्ट्स पर सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोनिक साउंड की ब्यूटी की वजह से है। फ्रॉम कृष्ण अवतारम, दिस इज प्रेम की लीला, द वॉइसेस, श्रेया घोषाल, जावेद अली एंड सुवर्णा तिवारी।
2: नंबर 18।

चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11 अच्छा

चुनरी चुनरी और ऑनेस्टली गाने रीमेक हो सकते हैं लेकिन फीलिंग रीमेक नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गाने आते हैं शोर मचाते हैं और चले जाते हैं, एंड देन कुछ गाने होते हैं जो पता भी नहीं चलता कब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, कब सुबह ड्राइव में आ जाते हैं, कब हेडफोन्स में रिपीट पे लग जाते हैं, कब आप उन्हें स्किप करना ही भूल जाते हैं। हर साल एक समर एंथम जरूर आता है लेकिन कभी कभी एक गाना समर एंथम से ज्यादा बन जाता है, वो पूरे सीजन का ही मूड बन जाता है, और मेरे लिए इस साल वो गाना है तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2। क्यों I'm sure आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया एक फैक्टर है। नॉस्टैल्जिया तो हर दूसरा गाना बेच रहा है भाई, ये कुछ और ही है। ये गाना भागता नहीं, ये चिल्लाता नहीं, ये अटेंशन भी नहीं मांगता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है। इसे शाम की ठंडी हवा, इसे वो लंबी ड्राइव, इसे कोई पुराना दोस्त जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद इसलिए कनेक्ट करता है ये गाना। और हाँ, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना को देखकर भी कुछ अलग ही महसूस होता है, दोनों एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, एंड वो ऑनेस्टी स्क्रीन से बाहर निकलकर गाने में घुल जाती है। एंड हाउ शाहिद कैन स्टिल लुक सो कन्विंसिंग एज अ कॉलेज बॉय, इट टोटली बैफल्स मी, बट ही नेल्स इट। मुझे नहीं पता ये गाना कितने हफ्ते चार्ट्स पे रहेगा, कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, बस इतना पता है मैं इसे स्किप नहीं कर पा रहा, एंड मे बी दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ सॉन्ग कैन गेट। Maybe this song will go to number 1, लेकिन इस हफ्ते on its debut, it's on number 10. Arijit Singh, even in his retirement year, is giving us these beautiful diamonds, और उनको साथ मिल रहा है सुनिधि चौहान का, दो अलग दुनिया एक साथ, this is तुझको from Cocktail

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड कि बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जाने

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर थ्री

0: वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ, करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज़ शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन स्टाइलिश इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ऐसा एंटी हीरो जिसके लिए आप सीक्रेटली रूट करने लगते हो, देयर इज नन, जीरो, कोई भी नहीं है। शायद इसलिए डॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉलीवुड हर दूसरे हफ्ते एक सीक्वल अनाउंस करता है, तब उसकी सबसे यूनिक फ्रेंचाइज अनसर्टेंटी में खड़ी है, एंड दैट फील स्ट्रेंज। हो सकता है डॉन 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, which is why I said it's the death of cool. So now it is up to Farhan Akhtar. वही डिसाइड कर सकते हैं if India gets another Dawn, if the world gets another Dawn, या फिर maybe we have seen the last of him. फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर वन एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव, ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर 1, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर।
1: नंबर 1 तू

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। दिस इज समथिंग।

कयामत मत तड़पा ऐसे तू अगर ना इंसाफी गलती करने वाला हूँ उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.
2: दिन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा

गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज प्रिसिला विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब तुम्हारा डेली टाइम ट्रैवलिंग का टाइम हो चुका है। 1692 में डार्क चैप्टर ब्रिजिट बिशप बिकेम द फर्स्ट पर्सन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द सालेम विच ट्रायल्स। Fast forward to 1752, one uncle took DIY science too seriously. Benjamin Franklin flew a kite in a thunderstorm and proved lightning is electricity. 1935 mein Alcoholics Anonymous yani ki AA was founded. Then 1963 mein Equal Pay Act signed in the US. And 1967 mein the Six-Day War ended with a ceasefire. Proof that even after conflict, people can still look for a way forward. Toh aaj ke din ki ye sari uplabdhiyan thi इन हिस्ट्री। फिलहाल फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, और तुम जाने वाले हो इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो करने के लिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैम, दिस इज प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब आज पता करते हैं बॉलीवुड में क्या चल रहा है। सो एक्टर हर्षवर्धन कपूर, यस अनिल कपूर के सन, रिएक्टेड आफ्टर पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट ही हैड स्टेप्ड अवे फ्रॉम एक्टिंग, बिकॉज स्टैट्स के हिसाब से 4 फिल्म्स की है उन्होंने और एक वेब सीरीज की है इन टोटल 10 years। बट हर्ष बेसिकली सेड, अरे भाई नॉट एवरीवन रन्स ऑन बल्क अपलोड मोड। उन्होंने क्लैरिफाई किया ही हैजंट स्टेप्ड बैक एट ऑल, पीपल आर जस्ट यूज्ड टू एक्टर्स डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। एंड देन ही पॉइंटेड आउट दैट फिल्म्स लाइक भावेश जोशी सुपर हीरो टेक्स ईयर्स टू मेक। एग्जैक्टली, और वो ईयर्स हो चुके हैं। इट्स अ गुड वे ऑफ सेइंग कि फिलहाल मेरे पास मूवीज है नहीं। आई रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, लेकिन इतनी कम फिल्म्स भी नहीं बनानी चाहिए एक प्रोफेशनल एक्टर को, क्योंकि तुम हर्षवर्धन कपूर हो, आमिर खान नहीं। और इसी बात पर जल्दी से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. दिस इज योर ट्रस्टेड सोर्स फॉर वेदर अपडेट्स. तो अभी वेदर का हाल चाल पता कर लेते हैं. टेम्परेचर फिलहाल इज सिटिंग एट 66 डिग्रीज फारेनहाइट. क्लाउडी वाइब्स तो चल रहे हैं और बड़े तरीके से सॉफ्ट लॉन्च किया है हवा ने टेम्परेचर को, विच इज गोइंग टू फील लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट. सुबह 9 बजे के आसपास थोड़े से बादल छट जाएंगे, पार्टली क्लाउडी स्काई हो जाएगा, सन की एंट्री हो जाएगी उस टाइम तक. और आज का टेम्परेचर का रेंज है 65 से लेकर 87 डिग्रीज फारेनहाइट. एंड हेड्स अप बिकॉज इट्स गोइंग टू फील लाइक 65 से लेकर 86 डिग्रीज फारेनहाइट. सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. एंड फटाफट से मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि बाहर निकलते टाइम आज लेयर के प्लेयर बनना, SPF 50++++ लगाकर ही बाहर जाना, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बिकॉज देयर इज अ हीट एडवाइजरी अलर्ट टिल 11 AM tomorrow. यानी कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ने वाली है. रेन लवर्स डोंट गेट टू एक्साइटेड. लास्ट 24 आवर्स में देयर वाज 0 मिलीमीटर्स ऑफ रेन, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में 5 मिलीमीटर्स की बरसात होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 5. इट्स जस्ट इनफ टू डिस्ट्रॉय योर हेयर स्टाइल बट नॉट गुड इनफ टू कैंसिल योर प्लान्स. और अगर कंपेयर करें कल से तो सिमिलर हाई टेम्परेचर्स है आज, एक्सेप्ट यस्टरडे स्टार्टेड कूलर एंड टुडे वोक अप विद अ लिटिल बिट ऑफ हॉट एम्बिशंस. सो इसी बात पर फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: That's right, I'm back on Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla and लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज एट एन अवार्ड सेरेमनी वेन शी ब्रोक प्रोटोकॉल एंड वॉक्ड अप टू कम्फर्ट द मदर ऑफ लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी हु रिसीव्ड द कीर्ति चक्र पोस्टमसली लेफ्टिनेंट तिवारी वॉज जस्ट 23 एंड लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल सेविंग एन अग्निवीर इन नॉर्थ सिक्किम द आर्मी डिस्क्राइब्ड इट एज एन एक्ट ऑफ लीडरशिप एंड ह्यूमैनिटी नंबर टू पर इंडिया क्रिटिसाइज पाकिस्तान एट द यूएन ओवर द यूज ऑफ द लेबल फितना अल हिंदुस्तान फॉर सम मिलिटेंट ग्रुप Inside Pakistan. Pakistan has alleged external backing, while India said claims should be backed with evidence. And number three, per a lawsuit has been filed in the US involving allegations that a 13-year-old patient's heart valve was implanted incorrectly during surgery, leading to complications before corrective treatment at another hospital. Since legal proceedings are ongoing, allegations remain part of the court process. Wishing strength and recovery to everyone affected. And that's it for me. मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट
1: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज

गुड मॉर्निंग माय पीपल, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सो एक्टर वरुण धवन ओपन अप अबाउट हिज वायरल स्माइल मीम डूइंग राउंड ऑनलाइन। कुछ टाइम पहले उनकी टेढ़ी हंसी जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। ही सेड एक्टर अर्जुन कपूर वाज एक्चुअली हैप्पी व्हेन वरुण वाज गेटिंग ट्रोल्ड ऑनलाइन। पीक फ्रेंड्स बिहेवियर, नॉट हेल्पिंग, जस्ट एंजॉयिंग द मिजरी। बट वरुण क्लियर्ड समथिंग अप। अपेरेंटली द वायरल इमेज वाजंट इवन फ्रॉम बॉर्डर टू। ही सेड द फेस was from ABCD2, the body wasn't his, and the whole thing was AI generated. And then came my favorite line. Varun said after all the trolling he landed 3 ads. Moral of today's story is aapke embarrassing moments jo hain wo kabhi kabhi aapki life ke main important moments ban sakte hain, because they put you right where you ought to be. Well, हम देसी बच्चों को तो ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है, क्योंकि आखिर आग में जलकर ही सोना सोना बनता है। एंड हीरो और सोने की बात हो तो तनिष्क कैसे याद ना आए। Enjoy up to 20% off on diamond value and on making charges of gold jewelry. साथ साथ में 0% deduction भी है on exchange of old gold above 18 carat. Of course, terms and conditions applied है, लेकिन offers बहुत ही yummy और amazing है। फिलहाल तुम्हारे लिए मिर्चीदार bangers भी आने वाले हैं only on मिर्ची mornings. मेरा नाम प्रिसिला, सुनते रहो मुझे एंड ऑफ कोर्स फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। प्रीटी सिंपल, राइट? स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: नमस्ते सलाम सत श्री अकाल एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल माय बर्थडे बेबीज आउट देयर. दिस इज प्रिसिला विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो यू आर ट्विनिंग योर बर्थडेज विद हॉलीवुड ग्लैम क्वीन एलिजाबेथ हर्ली. एंड साथ साथ में आज केट अपटन का भी हैप्पी बर्थडे, हु इज अ मॉडल एंड एक्ट्रेस. एंड अगर तुम्हारा ह्यूमर थोड़ा सा क्योटिक है तो बिल बर का भी आज हैप्पी बर्थडे है. बिल बर, बिल बर, हाँ बिल बर, बिल बर. वेल, मेरा ह्यूमर काफी सिक है. टेक पीपल, वी गॉट सुंदर पिचाई इन बर्थडे स्क्वाड टुडे एंड थ्रोइंग इट बैक. लेजेंडरी एक्ट्रेस एंड सिंगर जूडी गार्लैंड की आज बर्थ एनिवर्सरी है. एंड साथ साथ में म्यूजिक लवर्स, वी गॉट जोजो एंड फेथ एवंस. तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो अपने बर्थडे शाउटआउट्स मुझे भेज सकते हो तुम. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: तेरी मम्मी की जय,

है पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कटरीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब टाइम आ चुका है सोना और चांदी की खनखनाहट सुनने का, यानी कि रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,130, $4,130 पड़ रहे हैं उसके साथ। आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं और 2026 के लोवेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट पर हैं। जिनको लगता था गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कुड़ी कहंदी बेबी पहला जे गुआ ले लो, फेल जिन्ना मर्जी पिया ले लो।

0: Andy.
1: Musical Doctors.
2: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

0: गुड मॉर्निंग अगेन, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड अब बारी है
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, यू वांट टू करेक्ट समवन इन अथॉरिटी बट टुडे साइलेंस इज प्रीमियम। सेव एनर्जी, ऑब्जर्व, एग्जिट ड्रामेटिकली लेटर। लकी कलर इज रोज क्वार्ट्ज, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, यू सी द रियल वर्क नीडेड व्हाइल अदर्स आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक ऑन पावर पॉइंट। कम्युनिकेट क्लियरली विदाउट बिकमिंग ऑफिस विलन। लकी कलर इज डीप प्लम, लकी नंबर इज 32। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इफ एवरीवन थिंक्स समथिंग इज सिंपल एंड यू डोंट, मे बी इट जस्ट पर्सपेक्टिव और मे बी यू आर द जीनियस, इन्वेस्टिगेट। लकी कलर इज ओशन टील, लकी नंबर इज 6। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, टुडे इजंट अबाउट विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग व्हेन यू आर ऑन द सेम टीम। लेस डिबेट क्लब इज इक्वल टू मोर चाय डिप्लोमेसी। लकी कलर इज कॉपर ब्राउन, लकी नंबर इज 19। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, रियलाइजिंग यू've बीन गोइंग स्लाइटली ऑफ ट्रैक, रिलैक्स, टाइनी एडजस्टमेंट इज नीडेड, नॉट फुल लाइफ रीबूट। जीपीएस सेज रीकैलकुलेटिंग। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक इंडिगो, लकी नंबर इज 25। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स नीड विदाउट देम सेइंग इट। ब्यूटिफुल, just don't donate your entire wallet and emotional bandwidth. Lucky color is moon white, lucky number is 14. And that is your Rashi zone number 2. Main hoon Priscilla tumhare saath mein on Mirchi Mornings. Abhi mujhe apne saath rakho Insta aur X par bhi. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And right now WhatsApp kar sakte ho 9033 Mirchi par, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: कॉफी पीने वाली इंसान को ना सुबह सुबह चॉकलेट मिल्क पीने का बड़ा दिल कर रहा था।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. ये मतलब जो यादें हैं ना, ये टेस्ट के फॉर्म में भी आती हैं। हाँ, मतलब जो खाने का टेस्ट होता है उसमें भी बड़ा तगड़ा नॉस्टैल्जिया होता है। एंड आई ऑल ऑफ अ सडन ना वॉज जस्ट हैविंग दिस अर्ज, दिस क्रेविंग, कि मैं ना किसी तरीके से बचपन के जो चॉकलेट पाउडर्स हम पिया करते थे ना दूध में मिला के, वो वाला दूध पीऊँ। आजकल का वो जो फैंसी चॉकलेट मिल्क है उसकी बात नहीं करी थी मैं, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट चॉकलेट मिल्क जो हम स्कूल जाने से पहले रोज सुबह पिया करते थे, और जो मेरी तलब थी ना वो इतनी तेज थी, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि दूध पिया करती है या दूध पसंद किया करती है, लेकिन बचपन में मैं दूध पिया करती थी, स्कूल जाने से पहले ये रूटीन हुआ करता था। और आज ऑल ऑफ अ सडन सुबह सुबह ना ऐसा फील हुआ कि यार वो सुबह सुबह जो हम स्कूल जाने से पहले चॉकलेट मिल्क पिया करते थे ना, वो पिया जाए, उसका टेस्ट बार बार मेरे मुंह में आ रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस तरीके से किसी खाने की अर्ज होती है, क्रेविंग होती है, जो हमारे बचपन से जुड़ी है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ यादें दे रही है, उसे हम इतना आज पसंद नहीं करते, लेकिन स्टिल ऑल ऑफ अ सडन एक हवा सी आती है और आपको लग रहा होता है कि नहीं यार आज तो यही खाना है और यही पीना है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है। फिलहाल हम सब के साथ एक चीज तो होती है इस वक्त, एंड दैट इज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s का गियर लगता है। तो बस जी, फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।